0: वो देख वो क्या है?
1: पंछी है क्या?
0: ना रे पगले, प्लेन।
2: अरे देख अंडरवेयर बाहर है, सुपरमैन।
0: ना, दैट इज बाबा जी।